सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अंजोपाध्याय द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सदी होती, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है यार रहमान की आवाज में फिल्म तेरे इश्क में से।

इरशाद कामिल के लिखे बोल, ए आर रहमान का संगीत और उन्हीं की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तेरे इश्क में से। कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है आपके लिए नीति मोहन की आवाज़ में फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही से।

0: हनी बनी का संगीत सागर के लिखे बोल, नीति मोहन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों की खोज करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण सत्र में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं सेवा सत्र में आईटी, पर्यटन, फिनटेक और शिक्षा को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही विदिशा मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
1: हम विचार कर रहे थे कि टाटा में लोग एक यूनिट कैसे लाएं, तो दो चीजें आए, एक परमानेंट अस्पताल बनाना है, उसमें वो समय से लग, लेकिन जिनको आज कैंसर होने का क्या कर, वो इंतजार नहीं कर सकते 3 साल 4 साल, तो बाकी प्रक्रियाएं पूरी होती रहेगी। सुविधाएं तत्काल मेडिकल कॉलेज विदिशा में हम लोग प्रारंभ कर सकते, ये स्क्रीनिंग का, जांच का और परामर्श का शिविर लगाया जाए। हम वो चीजें जो आज जरूरी कर रहे हैं, डे केयर सेंटर यहाँ टाटा मेमोरियल यहाँ शुरू करेगा, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं।
0: प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशों के पालन में सभी जिलों में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में पालकगण आधार एवं सहमति पत्र के साथ उपस्थित होकर बच्चों की अपार आईडी बनवाएंगे। अपार आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल

0: रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। प्रदेश के मंडला जिले में आज तड़के बीजाडांडी थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं शाजापुर जिले में कल देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर मजदूरों से भरी एक बस आगे चल रहे लकड़ी से लदे ट्रक से जा टकराई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक कुशल रणनीतिकार और महायोद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने साहस और शौर्य से मराठा साम्राज्य के विस्तार के साथ मुगल शासन को प्रभावहीन कर दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले के ग्राम दाड़ी में आयोजित रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों से जनसंवाद किया। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हरित पर्यावरण और स्वस्थ भविष्य के लिए औषधीय पौधे विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीआरपीएफ नीमच के मेन्स क्लब में 25 जून को पेंशन अदालत एवं कल्याण एवं पुनर्वास बैठक का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले की नगर पालिका परिषद को वर्ष 2024-25 का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया। झाबुआ कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं कार्यालयीन उद्यान में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.6

0: 7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर

0: अदतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर

0: रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश जहां आपको हम सुनाते हैं आपकी पसंद के गीत और आपके पत्रों को भी हम शामिल करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत के साथ, जो है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। साथ है मोहम्मद अजीज़ और फिल्म का नाम है खुदा गवाह। इस गीत की फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ से, देवरी भाटापारा से। लिखा है हमारे श्रोता गनूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है जो कि है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खुदा गवाह से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गोरा और काला और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कब्रुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तवा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई की तरफ से। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी हमें पत्र भेजा है। कोटरा नारायणपुर बाबापट्टी पलियास से हमें लिखा है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दिव्या ने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल रॉय की भी फरमाइश आई है। और इसके अलावा पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें लिखा है रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बीवी आरजू जाजौरिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

मुस्कान प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गोरा और काला से। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन रहे हैं आप और अगली फरमाइश हमें मिली है औरंगाबाद से। लिखने वाले श्रोता हैं राजेश साबले पाटल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इसके अलावा बनिया पारा धमतरी प्रदेश छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, पूजा शरद और उनका पूरा परिवार। और इन्होंने फरमाइश की है जिस गीत की वो है सलमा आगा की आवाज़ में फिल्म निकाह से, तो लीजिए प्रस्तुत है ये गीत।

रवि का संगीत हसन कमाल के बोल, सलमा आगा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म निकाह से। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपकी अगली फरमाइश को सुनने का, और वो है फिल्म नवरंग से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में। और इस गीत की फरमाइश मिली है हमें जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट की तरफ से। इसके अलावा एक और पत्र मिला है हमें लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा की तरफ से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

0: सी रामचंद्र का संगीत भरत व्यास के लिखे बोल आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म नवरंग से। और इसी गीत के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपसे विदा लेने का। इसी तरह हमें अपने पत्र अपनी फरमाइशें भेजते रहिए। हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का आयोजन आज इंदौर में किया जा रहा है। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के दोनों प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन दाखिल किया। प्रदेश में आज मेगा अपार आईडी दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होगी। भोपाल की मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज शाम 6:30 बजे से महुआ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन राजा लोहांगुड़ी नृत्य नाट्य का आयोजन होगा। मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। और भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मिगाहारा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान विषय पर भेंटवार्ता सुनिएगा डॉक्टर सी आर मेहता से आज शाम 6:00। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम पीएम मोदी के 12 साल, मध्य प्रदेश बना चीतों का घर। रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित होगा शाम 7:45 पर। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:00। 9:30 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा ऋषिकेश गंगुरडे का ख्याल गायन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए नरेश सिंह बघेल द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

0: 300 मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज दोपहर भोपाल विधानसभा में चुनाव अधिकारी

0: अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, जंगलों में घूमना, नदी पहाड़ों की सैर करना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कैसा लगेगा जब आपसे ये सभी चीजें और आपका अधिकार छीन लिए जाएं? जाहिर है आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उन्हें वापस पाना चाहेंगे। ऐसा हुआ भी है, कब और कहां जानते हैं आज की युवाणी में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपके रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने अपनी जान देकर आदिवासी समाज को नई राह दिखाई। उनका नाम है बिरसा मुंडा। वो झारखंड के खूंटी जिले के उलिहाती गाँव में 15 नवम्बर 1875 को एक मुंडा परिवार में जन्मे थे। बिरसा बचपन से ही बहुत समझदार और साहसी थे। उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों और ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को करीब से देखा। आदिवासी अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति खोते जा रहे थे। बिरसा ने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने एक महान विद्रोह उलगुलान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और कहा, हमारी जमीन हमारी है, हमें अपना धर्म और संस्कृति बचानी है। बिरसा ने हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका नारा था अबुआ राज, मतलब हमारा राज। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी एक हो गए। इससे अंग्रेज बहुत घबरा गए। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की। वर्ष 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं और मात्र 25 साल की उम्र में 9 जून वर्ष 1900 को उन्होंने जेल में ही अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके बलिदान के बाद भी आदिवासी आंदोलन और मजबूत हुआ। बिरसा मुंडा का बलिदान हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कितना जरूरी है। उन्होंने दिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर हम एक होकर लड़ें तो अन्याय हार जाता है। आज झारखंड राज्य बनाने में भी बिरसा की प्रेरणा काम आई। उन्हें धरती आबा, मतलब पृथ्वी का पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा जी का बलिदान हमें याद दिलाता है कि देश के लिए, समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार रहो। उनकी याद में हम भी आज अपनी जिम्मेदारी निभाएं, शिक्षा लें, एकजुट और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहें। और दोस्तों, अब श्रेया घोषाल की मीठी और सुखविंदर सिंह की दमदार आवाज में आपको सुनवाते हैं जोश से भरा हुआ ये गीत।

दोस्तों, क्या आपने सीड योजना के बारे में सुना है? सीड योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया था। डीएनटीज का मतलब है विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां। ये वो समुदाय हैं जो सदियों से घूम घूम कर जीवन बिता रहे हैं। अंग्रेजों के समय में उन्हें अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद भी ये समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और अच्छे घर से दूर रहे। इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सीड योजना बनाई गई। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इन समुदाय के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है ताकि वे सरकारी नौकरियों, पुलिस, सेना और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। छोटे छोटे समूह बनाकर रोजगार और आजीविका शुरू करवाई जाती है।

0: जैसे हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन। समुदाय को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। इस योजना से हजारों युवा पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा रहे हैं, परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है और कई लोग अपना छोटा व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दोस्तों, सीड योजना हमें बताती है कि सरकार हर वर्ग के बारे में सोचती है। कोई भी व्यक्ति या समुदाय पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। जो छात्र इस समुदाय से हैं, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और कोचिंग के लिए आवेदन करें। सीड योजना देश के हर नागरिक को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और दोस्तों, अब दीपांजलि त्रिपाठी से जानते हैं डीएनटी समुदाय के लिए सरकार द्वारा और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
1: दोस्तों, हमारे देश के आदिवासी और डिनोटिफाइड ट्राइब्स यानी कि डीएनटी समुदायों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और संस्कृति को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। अगर हम कुछ मुख्य योजनाओं की बात करें तो धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ, जिसमें 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। ये अभियान करीब 63,000 आदिवासी गांवों में स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क, पानी, बिजली और रोजगार की सुविधाएं पहुंचा रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोगों को इससे फायदा हुआ। अगला है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये खास तौर पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि PVTG के लिए है। इसमें घर, साफ पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पर फोकस किया गया है। हजारों घरों में बिजली पहुंची, मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू हुई, वन धन केंद्र बने, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जरिए दूर दराज के इलाकों में अच्छी शिक्षा पहुंचाई गई। हर स्कूल में 480 बच्चे पढ़ते हैं। इससे लड़के लड़कियों दोनों को फायदा हुआ। कई छात्रवृत्ति योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास शिक्षा और विदेश पढ़ाई के लिए लाखों आदिवासी छात्र इससे पढ़ पा रहे हैं। वन धन योजना में जंगल की चीजों, महुआ, हल्दी जैसे कई चीजों को बेचकर हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। लाखों आदिवासी परिवारों की आय इससे बढ़ी है। दोस्तों, ये योजनाएं लाखों लोगों तक पहुंची हैं। शिक्षा में नामांकन बढ़ा, लड़कियों की पढ़ाई सुधरी, कई गांवों में बिजली पानी पहुंचा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। वनधन से लाखों लोगों को आय का नया जरिया मिला। पीएम जनमन ने 48 लाख से ज्यादा PVTG लोगों को छुआ। फिर भी चुनौतियां हैं, जैसे जागरूकता कम होना, दूर दराज के इलाकों में पहुँच मुश्किल होना और पूरा फायदा न मिलना। सरकार बजट बढ़ा रही है, लेकिन निगरानी और स्थानीय भागीदारी जरूरी है। दोस्तों, आदिवासी हमारी संस्कृति की जड़ है। इन योजनाओं से वो मुख्य धाराएं में आएंगे तो देश मजबूत बनेगा। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप दीपांजलि त्रिपाठी को सुन पा रहे थे और अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार की कई बड़ी भर्तियां चल रही हैं, जिनमें हजारों पदों पर आवेदन का मौका है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज हम आपको कुछ वैकेंसीज के बारे में बताएंगे जिनके फॉर्म आप 30 जून 2026 तक भर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रोजगार समाचार। पहली है एसएससी सीजीएल 2026। इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर 12,256 से भी ज्यादा पद हैं। ये ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा अवसर है। इसमें विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 22 जून 2026 है। आवेदन ssc.gov.in पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगली है आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की। इसमें 11,127 पद हैं और ये रेलवे की बड़ी भर्ती है। आईटीआई डिप्लोमा वाले उम्मीदवार इसमें आवेदन

आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 जून 2026 है। आवेदन rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विभिन्न कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, डिपुटेशन के आधार पर सीनियर कंसल्टेंट, डिजास्टर मैनेजर जैसे कई पद हैं। इनमें आवेदन की अंतिम तारीख 20 जून और 30 जून 2026 विभिन्न पदों के अनुसार है। आवेदन आधिकारिक NDMA पोर्टल पर किया जा सकता है। अगली है नालको नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल। इसमें 268 पद ऑपरेटर, टेक्नीशियन, फोरमैन आदि के हैं। 10वीं ITI डिप्लोमा विभिन्न पदों के अनुसार अलग अलग योग्यता है। आवेदन की अंतिम तारीख 10 जून 2026 है। nalcoindia.com पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली है कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी। इसमें 660 से भी ज्यादा विभिन्न डिसिप्लिन में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 11 जून 2026 है। इनके अलावा UPSC में विभिन्न पद इंडियन नेवी, अग्निवीर, कोंकण रेलवे, SBI अपेरेंटिस के भी बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकली हैं। दोस्तों SSC, CGL, RRB, LP जैसी बड़ी भर्तियों में जल्दी आवेदन करें, क्योंकि बाद में सर्वर का भारी लोड होता है। डेप्यूटेशन वाली NDMA भर्तियां अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन किसी भी भर्ती में अप्लाई करने से पहले ये बात जरूर याद रखें कि फॉर्म भरने से पहले पूरा नोटिफिकेशन PDF ध्यान से पढ़ें। इनमें योग्यता, आयु सीमा, फीस, इन सभी का ध्यान रखें। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और फीस समय पर जमा करें। ये भर्तियां युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। जल्दी आवेदन करें और तैयारी शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए या किसी खास भर्ती के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करें। तो रोजगार समाचार में आज इतना ही, और आपको अपनी तैयारियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अब वक्त हो चला है हमारे आज के विशेष स्तंभ इंद्रधनुष का। तो आपको सुनाते हैं इंद्रधनुष का ये पहला गीत जावेद अहमद की आवाज में।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ,

0: मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कवि हेमंत देवलेकर,
5: आकाशवाणी की दुनिया जहाँ संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
6: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
7: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं ओमकारा फिल्म से। राहत फतेह अली खां की आवाज़ है, गुलजार की शब्द रचना, संगीत विशाल भारद्वाज का।

अगला गीत आरक्षण फिल्म से लिया है, जिसे गाया श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई शंकर एहसान लॉय ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अंतरा मित्रा और मोहित चौहान की आवाज़ों में है, इरशाद कामिल के बोल, संगीत प्रीतम का है। इस गीत को हमने लिया राजनीति फिल्म से।

0: मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे राजनीति फिल्म का गीत। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीत था प्रीतम का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यही समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की।
2: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
3: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
2: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
3: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला ना रखें।
2: सीधे नल के नीचे बर्तन ना धोएं।
3: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
2: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
3: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
2: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
3: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
2: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
3: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
2: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
3: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
4: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
3: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
2: समय है पानी बचाने का,
3: पानी का मोल समझने और समझाने का।
2: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

İş yer dika, pokern dika. Miss World dikhi, World Cup dika. Chandrayaan dika, Insat dika. Nayi kahaniyon ne naya Bharat likha. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही का

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है।

0: Gen Z भी है, है also Gen Old नहीं पुरानी. Best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है. लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें.
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया. इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे. प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया. मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, देवास, हरदा और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है. और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है. तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे. वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें.

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष भेंटवार्ता। विषय है कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सी आर मेहता, डायरेक्टर CIAE। इनसे बातचीत की है चंद्रशेखर शर्मा ने।
1: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी अपनी गौरवमय और स्वर्णिम प्रसारण यात्रा के 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है। हमारे श्रोता जानते हैं कि 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी पर नियमित प्रसारण की शुरुआत हुई थी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और सूचना शिक्षा मनोरंजन, इन सब बातों को लेकर कार्यक्रमों के माध्यम से जनहित के लिए जो कार्य किए जाने हैं, आकाशवाणी उसमें अपना पूरा योगदान शिद्दत के साथ निभा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज़ादी के वक्त तो हमारे देश की जो सकल घरेलू उत्पाद GDP, उसका आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे कृषि क्षेत्र से ही आता था। और इस सफ़र के दौरान जब केवल आकाशवाणी अकेला सरकारी माध्यम हुआ करता था, आकाशवाणी ने किसानों तक नई तकनीक, आधुनिक उपकरण और नई नवीनतम वैज्ञानिक जानकारियां पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सेतु का काम किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अपने विभिन्न कार्यक्रमों, विशेष तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा ग्राम सभा और कृषि चर्चा और किसानवाणी, जो LRS के लोकल रेडियो स्टेशन के माध्यम से जिसने स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करके उन तक कृषि के नए नए उपादान, नई नई तकनीक पहुँचाने का और ग्रामीण विकास के लिए एक सार्थक कार्य करने की भूमिका निभाई है। आज इस प्रसारण या

0: यात्रा के संदर्भ में ही हम एक विशेष मेहमान के साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आप हैं डॉक्टर सी आर मेहता जी, जो डायरेक्टर हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नवीबाग भोपाल में, और कृषि विकास और यंत्रीकरण में आकाशवाणी का योगदान इस विषय पर आज हमसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: सर। जैसे कि आज का विषय है कृषि विकास और यंत्रीकरण में आकाशवाणी का योगदान, आकाशवाणी की एक लेगेसी रही है, लंबी यात्रा रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी का कृषि विकास या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान है, इसको किस प्रकार से आंकते हैं?
1: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को बधाई देता हूँ कि आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आप सभी आकाशवाणी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। जहाँ तक कि कृषि विकास में आकाशवाणी का योगदान है, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा
0: जी
1: कि जब आज से करीब 40 साल पहले या 45 साल 50 साल पहले
0: जी,
1: तब कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, आकाशवाणी ही एक माध्यम था,
0: अकेला माध्यम था।
1: चाहे वो कृषि से संबंधित जानकारी की जरूरत हो या आपको देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, उसके बारे में सूचना की जानकारी का सवाल है
0: जी।
1: तो उसमें पहले एक रेडियो हुआ करते थे और रेडियो भी इस प्रकार के होते थे कि पहले बटन ऑन करो, थोड़ी देर बाद उसमें से आवाज आती थी
0: जी।
1: फिर बाद में वो ट्रांजिस्टर यूज होने लगे
0: जी।
1: पहले बड़े ट्रांजिस्टर होते थे, फिर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आए और अब आजकल बहुत छोटे हैं, यहाँ तक कि मोबाइल में भी आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकते हो
0: जी।
1: शुरुआत की बात करें तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे
0: जी,
1: तब हम कृषि की तो बात नहीं सुनते थे, लेकिन जब भी विविध भारती गीतमाला प्रोग्राम आता था
0: जी,
1: तो उसको हम अक्सर सुनते थे और उसमें ये देखते थे कि इस बार कौन सा नंबर वन पर है, नंबर टू पर कौन सा गाना है, वो गाने की रैंकिंग वगैरह करके सभी गानों को बजाया जाता था
0: जी,
1: और वो रैंकिंग होती थी, उस प्रकार के कार्यक्रम होते थे
0: जी।
1: दूसरा मुझे अभी भी याद आ रहा है, अगर पुरानी बातें मैं सोचता हूँ तो तीसरा वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो हुआ था
0: जी,
1: इंग्लैंड में हुआ था
0: जी 1983 में,
1: 1983 में
0: जी,
1: और उस समय टीवी उस समय खास तौर से मैच जिस जगह पर था नहीं आए थे, भारत में कुछ बड़े शहरों में उस समय टीवी आ गए थे,
0: उस वक्त शुरुआत मानी जाती थी
1: जी,
0: एक व्यापक
1: तो उस समय हमें जब पता चला कि भारत फाइनल में है, बड़ा क्रेज था, तो हमने आकाशवाणी के थ्रू ही उसकी कमेंट्री सुनी थी और वो कमेंट्री रात को देर तक सुनी थी और भारत जीत गया था
0: जी।
1: तो उस प्रकार से हम आकाशवाणी से शुरू से जुड़े रहे हैं
0: जी।
1: जब कृषि की बात करें तो जब से हमने कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री की, उसके बाद केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में एज ए वैज्ञानिक ज्वाइन किया
0: जी,
1: उसके बाद आकाशवाणी की तरफ से हमें आमंत्रण मिला कि आप कृषि अभियांत्रिकी के बारे में जानकारी दें किसानों को, तब हमें कृषि अभियांत्रिकी के बारे में जानकारी देने का अवसर मिला और आजकल तो आकाशवाणी के साथ बहुत सारे दूसरे मीडिया भी है जिसके थ्रू किसान कृषि से संबंधित जानकारी ले सकते हैं
0: जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने सबसे पहले रेडियो पर जो हमारा वर्ल्ड कप भारत टीम जीती थी 1983 में
1: जी,
0: कपिल देव की कप्तानी में, और बड़ी ऐतिहासिक जीत थी और भारत में पूरा खेल सिनेरियो जो चेंज करने का है उस जीत को श्रेय जाता है।
1: जून का महीना था शायद 21 तारीख या 23 तारीख।
0: हम सर ये जानना चाहते हैं कि जो आपने पहला प्रोग्राम दिया, आपके जहन में अभी भी ताज़ा होगा कि पहला प्रोग्राम किस विषय पर था या किस केंद्र पर आपने दिया था?
1: मैंने अपना पहला प्रोग्राम भी भोपाल में ही दिया
0: जी,
1: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से
0: जी,
1: और वो कृषि अभियांत्रिकी में जो जो नई नई उस समय उपकरण आ रहे थे, आज जैसे नए नए स्मार्ट मशीनें आ रही है, उस समय स्मार्ट नहीं थी लेकिन जो ट्रैक्टर से चलने वाली उस समय जो नई आ रही थी, उनके बारे में मैंने आकाशवाणी के कार्यक्रम के थ्रू जानकारी दी है
0: जी।
1: और उस जमाने में तो मेरा कहना है कि किसान भाई भी सबसे ज़्यादा आकाशवाणी से ही जुड़े हुए थे, दूरदर्शन बहुत कम
0: जी, जी।
1: या गाँवों में तो उतनी अच्छे से उपलब्ध भी नहीं था, किसान अपने खेती का काम करने के साथ आकाशवाणी को सुनने की उनकी फिर भी आदत थी
0: जी। यही रेडियो की पोर्टेबिलिटी है, रेडियो के साथ किसी प्रकार के ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये सबका लोकप्रिय रहा है, विशेष तौर पर किसानों के लिए इसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सर अब ये बात करें कि जो आप CII का प्रतिनिधित्व करते हैं
1: जी,
0: जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नए नए इक्विपमेंट्स डेवलप हुए हैं, तो उनके डेवलपमेंट में जो कुछ खास बातें रही हैं या खास उपकरण रहे हैं उनके बारे में और उनके प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की क्या कोई भूमिका रही है, इस बारे में आपके विचार जानेंगे।
1: आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न

0: पूछा। जहाँ तक कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की बात करें
1: जी,
0: तो उसने भी अभी पिछले साल ही 50 वर्ष पूरे किए हैं
1: जी।
0: जब शुरू में खेती में उपकरण का हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे तो मनुष्य और पशु चालित उन्नत कृषि यंत्रों के विकास पर हमारा काफ़ी जोर था
1: जी।
0: उस समय तो आकाशवाणी ही मेन मीडियम होता था जिसके थ्रू हम किसानों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते थे
1: जी।
0: उस समय इतना इजी नहीं था कि आपको मोबाइल हो और मोबाइल पर आप यूट्यूब या उसके थ्रू भी आप या व्हाट्सएप के थ्रू किसानों तक बात पहुंचाए। तब उस समय आकाशवाणी था, उसके बाद दूरदर्शन भी एक मीडिया आया लेकिन उसकी भी उतना पेनिट्रेशन नहीं था
1: जी, जी।
0: उसके बाद धीमे धीमे जैसे इम्प्रूव टूल्स एंड मशीनरी पर जैसे ट्रैक्टर ऑपरेटेड सेल्फ प्रोपेल्ड पर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ और आजकल जो हम स्मार्ट मशीनरी के डेवलपमेंट पर काफ़ी काम कर रहे हैं तो इन सब के जब तक किसानों के पहुंचाने के लिए अभी भी एक आकाशवाणी एक सशक्त मीडियम है जिसका कि हम समय समय पर उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम दूसरे मीडियम भी यूज करते हैं लेकिन आकाशवाणी की भी उसमें एक अहम भूमिका है
1: जी। और हमारे यहाँ से प्रसारित कार्यक्रमों में आपके संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कॉन्ट्रीब्यूशन सराहनीय रहता है और किसानों के लिए जो भी तात्कालिक महत्व के प्रश्न होते हैं विषय होते हैं उन पर बिल्कुल अपडेटेड जानकारी के साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ उपस्थित होते हैं। हम सर ये जानना चाहेंगे कि जो अभी हाल ही में 1 जून से 30 जून के मध्य केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम खेत बचाओ अभियान के नाम से लॉन्च किया गया है
0: जी।
1: तो इसमें आप अपने संस्थान की और आकाशवाणी की भूमिका को किस प्रकार से आँकते हैं?
0: पहले तो मैं खेत बचाओ कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊंगा
1: जी।
0: उसमें ये है कि आप सब जानते हैं कि अभी ईरान
1: जी
0: और यूएस का युद्ध चल रहा है और ख़ास तौर से उसकी वजह से जो मतलब तेल वगैरह का जो इंडिया इंपोर्ट करता है
1: जी।
0: उस पर काफ़ी फर्क पड़ा है और तेल की कीमतें बढ़ गई है तो उसकी वजह से अब ये जो हमारे खाद बनाते हैं
1: जी।
0: या खाद के लिए जो कारखाने चलते हैं वो भी सब तेल पर निर्भर है
1: ईंधन,
0: यहाँ तक कि उसमें कुछ इंपोर्ट भी किया जाता है तो इसको बचाने के लिए खेत बचाओ अभियान में विशेष जोर है। अभी क्या होता है किसान खाद खेत में खेत की ज़रूरत के हिसाब से न डाल के उसको जितना मिल जाता है
1: उतना
0: वो उतना डाल देता है। वो ये सोचता है कि मैं ज़्यादा खाद डालूंगा तो मेरी पैदावार ज़्यादा होगी। तो मेरा किसानों से ये आग्रह है कि खेत की मिट्टी की जांच कराएं, उसका सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, उसके बाद देखें कि खेत में किस न्यूट्रिएंट की कितनी आवश्यकता है और उसी आवश्यकता के अनुसार खेत में उपयोग कराएं। उसमें जैसे कि खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्घाटन अपने रायसेन डिस्ट्रिक्ट में रामसिया गांव से हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने 1 तारीख को किया। उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया और किसानों तक इस अभियान की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया लेकिन उसमें विशेषकर मैंने वहाँ भी देखा कि आकाशवाणी से भी भोपाल आकाशवाणी की टीम उपलब्ध थी और उन्होंने भी उस प्रोग्राम को कवर किया जिससे कि किसानों तक अधिक से अधिक जानकारी इस कार्यक्रम के बारे में मिले। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें वैज्ञानिक इस इन 30 दिनों में अलग अलग गाँवों में जाके किसानों को सेंसिटाइज कर रहे हैं और उसमें भी आकाशवाणी अपना योगदान दे रहा है
1: जी। हम सर बात करें ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और विशेष तौर पर आपके माध्यम से जो यंत्रीकरण का प्रयास किया जा रहा है तो जो महिलाओं के लिए जो ऐसे यंत्र जिनको कि महिलाएं भी अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकें इस पर भी आपके संस्थान द्वारा कार्य किया जा रहा है। आकाशवाणी के माध्यम से हम किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं?
0: मेरा आपसे यही कहना है सभी से कि जो भी उपकरण होते हैं
1: जी
0: वो इस प्रकार के होने चाहिए कि उसको महिला या पुरुष दोनों
1: ऑपरेट
0: कर सकते हैं
1: जी।
0: आप ये भी जानते हैं कि दोनों की कैपेबिलिटी
1: जी,
0: दोनों के स्ट्रेचर में डिफरेंस होता है, स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है तो अपन को उस प्रकार से उपकरण हम विकसित करते हैं कि उसमें एडजस्टमेंट देते हैं जिससे कि मेल एज वेल एज फीमेल दोनों कारक करता ढंग से उसको उपयोग कर सकते हैं
1: जी।
0: आकाशवाणी से भी मेरा यही अनुरोध है और समय समय पर हमारे साथी और हम लोग आकाशवाणी के थ्रू भी महिलाओं तक ये समाचार पहुंचाते हैं आपके लिए हमने उपकरण विकसित किए हैं या उन जो एग्जिस्टिंग उपकरण थे उसमें मॉडिफिकेशन किया है कि उनको आपके लिए सूटेबल बनाने के लिए और उसमें हम समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमारे संस्थान में आयोजित करते हैं जिसमें कि आप भाग ले सकते हैं और आकाशवाणी के थ्रू भी ये हम

0: किसानों तक और महिलाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं।
1: जी सर, यहाँ पर मैं विशेष तौर पर किसान वाणी कार्यक्रम की बात करना चाहूँगा, क्योंकि किसान वाणी जिन केंद्रों के माध्यम से होता है, हमारे लोकल रेडियो सेंटर्स हैं वो, और उसमें स्थानीय स्तर पर किसान जो हितग्राही हैं उन तक रेडियो पहुँचता है, और वहाँ पर KVK और बड़े संस्थानों के, जैसे आपका संस्थान है, यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा उनको लाइव डेमो दिया जाता है और उस कार्यक्रम का एक रिपोर्ट के माध्यम से हमारे द्वारा प्रसारण किया जाता है। तो ये जो भूमिका रही आकाशवाणी की, इसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: इसमें आकाशवाणी की भूमिका तो बहुत अच्छी रही है जी। दूसरा ये है कि आकाशवाणी की एक्सेस या अवेलेबिलिटी
1: जी
0: बहुत ज़्यादा है
1: जी, जी
0: कहीं भी आप कहीं भी सुन सकते हैं। उसके लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आप चलते हुए भी आकाशवाणी पर
1: जी, जी
0: जानकारी ले सकते हैं, और आपके जो कार्यक्रम है वो किसानों तक अधिक से अधिक संख्या में इसके द्वारा पहुंच रहे हैं
1: जी। आपका कोई यादगार अनुभव रेडियो के संदर्भ में, चूँकि हम रेडियो का ये 90 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोई आपका ऐसा यादगार अनुभव?
0: उसमें विशेष तो मैं पहले ही कुछ एग्जाम्पल बता चुका हूँ कि वर्ल्ड कप का फाइनल की कमेंट्री हमने रात को लेट तक जग के सुनी थी
1: जी,
0: वो भी एक बड़ा था। दूसरा है जो संगीतमाला
1: जी,
0: उस कार्यक्रम को हम करीब रेगुलर सुनते थे
1: जी,
0: और कृषि से संबंधित कार्यक्रम को तो हम उतना फिर भी अभी नहीं सुन पाते, लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, और मेरा ये भी कहना है कि इसको थोड़ा और इनोवेटिव करने की ज़रूरत है। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि पॉडकास्ट आ रहे हैं
1: जी,
0: तो उसमें क्या होता है कि आप बीच बीच में फोटोग्राफ्स डालें तो कम से कम और थोड़ा सा इंटरेस्ट किसानों का बढ़ेगा कि जो भी जानकारी दे रहे हैं आप किस मशीन की बात कर रहे हैं। जैसे हम इंजीनियर हैं, हम मशीनों की बात करते हैं, अगर केवल मैं बात ही करूंगा तो समझ में नहीं आएगा जिसने वो मशीन देखी नहीं है
1: जी।
0: तो उसके साथ फोटोग्राफ भी हो तो कम से कम उसको ये पता चलेगा कि ये मशीन है जिसके बारे में कि अपन आकाशवाणी में, तो इस प्रकार का आकाशवाणी में इनोवेशन किया जा सकता है
1: जी। आपने सर उसी प्रश्न का जवाब दिया जो मैं आपसे पूछने जा रहा था, कि जो वर्तमान परिदृश्य है, डिजिटल टाइम है, ये इस डिजिटल समय में हमें क्या क्या परिवर्तन लाने हैं ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में, और जैसा आपने बताया पॉडकास्ट का, तो हमने ये सिलसिला सर शुरू भी किया है, और जो आकाशवाणी का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें पॉडकास्ट और अलग अलग माध्यमों से जो नए तरीके हैं तो उसके माध्यम से प्रसारण सुनिश्चित किया जा रहा है, और प्रसारण की गुणवत्ता अच्छी हो इसके लिए FM चैनल्स का भी विस्तार किया जा रहा है। बदलते समय के साथ जो तकनीकी आवश्यकता है उस युग में हम लोग भी साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, हम सभी जानते हैं कि आपदा के समय पर, विशेष तौर पर जब बाढ़ या सूखा की बात आती है, आकाशवाणी ने आपदा प्रबंधन में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने प्रसारण के माध्यम से लोगों को जागरूक करने और उन तक राहत और रसद पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक विशेष कार्यक्रम है मन की बात, वो भी वो आकाशवाणी के माध्यम से ही शेयर करते हैं।
0: जहाँ तक आपदा प्रबंधन की बात है
1: जी,
0: एक तो क्या है कि आकाशवाणी का पहुँच बहुत ज़्यादा लोगों में है
1: जी, लगभग 100% क्षेत्रों तक कवर करते हैं, और जियोग्राफिकली 92% क्षेत्र को हम कवर करते हैं
0: जी। तो उसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा
1: जी,
0: 1971
1: जी,
0: जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था
1: जी,
0: मैं बहुत छोटा बच्चा था
1: जी,
0: लेकिन तब भी मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि तब तो कुछ भी हमें पता नहीं लगता था, तो केवल आकाशवाणी पर सुनते थे कि अच्छा इधर ये हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमें सेफ्टी लेनी पड़ती थी, विशेषकर राजस्थान में
1: जी। हाँ सर, बिल्कुल।
0: और हम छोटी ऐसी जगह रहते थे, घर की बिजली भी बंद करनी पड़ती थी रात को, तो इसमें भी आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा, आजकल भी कभी भी कोई जैसे अलर्ट होती है उसका आकाशवाणी के थ्रू सभी तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है अलर्ट, और वो मैसेज क्या होता है कि कहीं आदमी चल भी रहा है तब भी उसको पता चल जाता है कि यह हुआ। उसका एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, 26 जनवरी के दिन ये भूकंप आया था
1: जी
0: गुजरात में
1: जी,
0: और उसमें मैं अहमदाबाद से भोपाल लौटा था
1: जी,
0: भोपाल में लौट के मैं रास्ते में था, आकाशवाणी को सुना तो पता चला कि भूकंप है, हल्के झटके भोपाल में भी आए, मुझे तुरंत चिंता हुई
1: जी।
0: तो इस प्रकार की है
1: जी,
0: सूचना जल्दी पहुंच जाती थी
1: जी।
0: दूसरा एक ये एग्जांपल जैसे मन की बात है
1: जी,
0: तो इस बार 134वां एपिसोड था मन की बात का, प्रधानमंत्री जी का जी। वो हमने हमारे संस्थान में उसको लाइव सुनने के लिए रखा था, विशेषकर किसान भाइयों के लिए
1: जी।
0: उसमें 200

0: 100 करीब किसान भाइयों ने भाग लिया था
1: जी।
0: और उस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई जी पटेल साहब ने भी शिरकत की थी। उन्होंने न केवल हमारे संस्थान के जो मशीनें डेवलप हुई उसके बारे में जानकारी ली थी, बल्कि मन की बात का भी सुना था और उसके साथ किसानों के साथ भी उसको शेयर किया था और इम्पोर्टेंस बताई थी। तो मेरा ये कहना है कि उसकी एक, जैसे आप मन की बात का सुनेंगे कि 134 एपिसोड हो गए
1: हैं,
0: तो ये एक पेनिट्रेशन शो करता है। दूसरा, उसमें भी इनोवेशंस आपने देखा होगा कि शुरुआत के जो एपिसोड थे वो केवल रेडियो पर सुनाई देते थे, अब आप चाहे तो उसको टीवी पर भी दिखा सकते हैं, उसमें विजुअल्स भी ऐड किया गया, तो ये भी आकाशवाणी का एक इनोवेशंस है। तो यही मैं आपकी जानकारी में शेयर करना चाहता था और ये भी कहना चाहता था कि आकाशवाणी की अभी भी काफ़ी रिलीवेंस है। कई बार व्यक्ति कहते हैं कि आज इतने अधिक मीडियम आ गए, मोबाइल पर वो आ गए, ऑप्शंस आ गए, लेकिन फिर भी इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है।
1: हमारे श्रोताओं के लिए सर कोई संदेश आप देना चाहें?
0: श्रोताओं से मैं यही कहूँगा कि आप न केवल आकाशवाणी से जुड़े रहें, बल्कि आप अदर मीडियम्स जो भी है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके साथ जुड़े रहें। और ये विशेषकर ये भी कहूँगा कि दूसरे मीडियम पर तो सूचना जो मिलती है उसमें कुछ गलती भी हो सकती है, लेकिन आकाशवाणी सूचनाओं को जांच करके ही उसको प्रसारित करता
1: उसकी है, एक्यूरेसी है,
0: तो उसके लिए आप रिलायबिलिटी की वजह से भी उस पर आप भरोसा कर सकते हैं।
1: जी, आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को कि कृषि विकास और यंत्रीकरण के क्षेत्र में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि थे सीआर मेहता साहब, इन्होंने हमें बताया कि रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि किसानों के जीवन में परिवर्तन का भी साधन रहा है। आशा है चर्चा हमारे श्रोताओं को प्रेरित करेगी और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं को अपनाने के लिए उनको मार्गदर्शन मिलेगा। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला और प्रतिभागिता सुनिश्चित की।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष भेंटवार्ता, जिसका विषय था कृषि विकास एवं यंत्रीकरण के प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सीआर मेहता, डायरेक्टर CIAE। इनसे बातचीत की थी चंद्रशेखर शर्मा ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जयदीप साहनी का लिखा, संगीत सलीम सुलेमान का। आजा नचले फिल्म का ये गीत है जिसे आवाज़ें दी सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

0: मोहित चौहान की आवाज़ में गए जब वी मेट फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, शाम के 6:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए।
1: स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कटियार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का विषय है पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल, मध्य प्रदेश चीतों का नया घर। मध्य प्रदेश के कूनो का प्रोजेक्ट चीता एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर सिर्फ मध्य प्रदेश या देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं। वर्ष 1952 में हमारे देश से रफ्तार की बेताज बादशाह चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। दशकों तक हमारे जंगल इस अनोखी दहाड़ को तरसते रहे, लेकिन फिर आया साल 2022 जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों और इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि आज प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से भारत की धरती पर चीतों की सफल वापसी हुई है, जिसने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का एक नया अध्याय लिख दिया है। इस महाअभियान को जमीन पर उतारने और आगे बढ़ाने में हमारे हार्ट ऑफ इंडिया यानी मध्य प्रदेश का योगदान अतुलनीय है। सूबे के संवेदनशील और विकास परक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार कूनो नेशनल पार्क को न सिर्फ चीतों के लिए एक सुरक्षित आशियाना बना रही है बल्कि इस पूरे क्षेत्र में इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी प्रयासरत है। चुनौतियां बड़ी थीं, मौसम नया था और दांव पर थी देश की साख। इस पूरे मिशन को जमीनी स्तर पर संभालने, चीतों की 24 घंटे सुरक्षा करने और कूनो के जंगलों में उनके कुनबे को बढ़ाने के पीछे वन विभाग की एक समर्पित टीम है और आज उसी टीम के कप्तान यानी प्रोजेक्ट चीता के डायरेक्टर और वरिष्ठ वन अधिकारी श्री उत्तम कुमार शर्मा जी हमारे साथ सीधे कूनो से इस रेडियो चर्चा में जुड़े हैं। उत्तम जी, रेडियो पर हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
1: उत्तम जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

0: साल 2022 में जब कूनो में चीतों को छोड़ा था, तब से अब तक ये प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा है और सबसे बड़ी सफलता क्या रही है?
1: ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, सभी देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि चीता जो हम लोगों ने आज से 70 साल पहले खो दिया था, उसको 17 सितंबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस भारत देश लाया गया। भारत देश में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाके उसको छोड़ा
0: जी
1: गया। एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। 8 नामीबिया से चीते माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 17 सितंबर को लाए गए थे। उसके बाद 12 और चीते साउथ अफ्रीका से 18 फरवरी 2023 को लाए गए, और अभी हाल ही में 9 चीते बोत्सवाना से 28 फरवरी 2026 को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। कुल 29 चीते हम लोगों के अफ्रीका के अलग अलग 3 देशों से लाए गए हैं, उसमें से 20 आज की तारीख में सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो तो सबसे बड़ी उपलब्धि इस प्रोजेक्ट की कही जा सकती है इस लगभग लगभग 4 साल के कार्यकाल में, वो
0: जी
1: ये कि 33 चीते भारत की धरती पर जन्म हुए हैं और यहाँ फल फूल रहे हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के हमारे पास में आज की तारीख में भारत में 53 चीते हैं।
0: जी
1: और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने कूनो के अतिरिक्त जो इसकी दूसरी साइट है, गांधी सागर सेंचुरी, वो भी पिछले साल हमने शुरू की है, और 3 चीते, 2 नर 1 मादा गांधी सागर में पिछले साल में वहां भेजी गई है।
0: जी
1: इस प्रकार 50 चीते कूनो में और 3 चीते गांधी सागर सेंचुरी में इस वक्त मौजूद हैं। और जिन उद्देश्यों के लिए को लेकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, हमें लगता है कि हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर। जब भी किसी जानवर को किसी दूसरे प्रवास में विस्थापित किया जाता है तो उसकी अनुकूलता पर एक सवाल उठता है। जो चीते कूनो से हमारे देश में विस्थापित किए गए थे और जिन चीतों का जन्म कूनो में ही हुआ, वे दोनों ही किस प्रकार से अब भारत की स्थितियों में, विशेषकर कूनो की परिस्थितियों में ढल चुके हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
1: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रोजेक्ट है, इस सेंस में कि ये पहला ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है किसी भी बड़े कार्निवोर का।
0: जी
1: इससे पहले कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं किया गया था, तो ये पहली बार प्रयोग किया गया। दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में चीते लाए गए,
0: जी
1: जिसका मतलब ये होता है कि मौसम बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जब वहां गर्मी पड़ती है तो यहाँ सर्दी पड़ती है, और जब वहां सर्दी पड़ती है तो यहाँ गर्मी पड़ती है। तो चीतों के लिए अपने आप को उस प्रकार से विपरीत मौसम में ढालना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
0: जी
1: तो लगभग पहले साल में इस प्रकार की चुनौतियां रही, चीतों के लिए भी चुनौतियां रही, और हम लोग भी जो इसमें नए थे मैनेजमेंट में, क्योंकि मैनेजमेंट का कोई भी ऐसा इतिहास भारत देश में मौजूद नहीं था, क्योंकि 1952 के बाद में यहाँ चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो मैनेजमेंट का कोई भी एक्सपीरियंस भी वन विभाग के पास में नहीं था।
0: जी
1: तो उस शुरुआती दौर के बाद से चीतों ने अपने आप को बहुत तेजी से यहाँ के वातावरण में ढाला है।
0: जी
1: यहाँ की मिट्टी, यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ की धरती, यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ के कोप्रेडेटर, यहाँ के प्रे, उन सब में चीतों ने बहुत तेजी से अपने आप को यहाँ पे ढाला है। ये वाकई आश्चर्य की बात है। इन लोग इतना, हम लोग भी और जो भी चीता के विशेषज्ञ हैं वो भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी जल्दी ये अडेप्टेशन होगा, लेकिन हुआ। और इसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि चीता की ब्रीडिंग यहाँ पे बहुत सक्सेसफुली हुई। जैसे मैंने बताया कि 33 भारत में जन्मे चीता आज की तारीख में हम लोगों के पास में है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि दर्शाता है। वो इस सेंस में भी बताता है कि चीता ने इस धरती को अडेप्ट कर लिया है, इस धरती को अपना लिया है, और ब्रीडिंग उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है। तो वो जो शुरुआती दौर होता है 1-1.5 साल का स्ट्रगल का,
0: जी
1: उस दौर से हम लोग आगे निकल गए हैं, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में चीतों ने अपने आप को पूनो और मध्य प्रदेश के मौसम के हिसाब से ढाल लिया है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। कूनो की धरती पर जब पहले शावक पैदा हुए तो वो पल कैसा था और उनकी परवरिश के लिए तब से लेकर अब तक क्या-क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
1: कूनो में सबसे पहला शावकों का जन्म जो है 29 मार्च 2023 को हुआ था, जब ज्वाला नाम की एक फीमेल ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। वो हमारे लिए, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समस्त भारतीयों के लिए एक बड़ा खुशी का पल था, क्योंकि बड़ी छोटी सी अवधि में, लगभग 6 महीने के अंतराल में सक्सेसफुल ब्रीडिंग होके बच्चों का, शावकों का जन्म हुआ। जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट के सफलता के लिए और चीतों के अडेप्टेशन को दिखाने के लिए।
0: जी
1: तो सभी के लिए बहुत खुशी का माहौल था। सामान्यतः जो है वो बच्चों की परवरिश

0: माँ के ऊपर ही होती है,
1: जी जी
0: माँ बच्चों को संभालती है। हमारी तरफ से सिर्फ जो है वो जहाँ भी जरूरत हो, हमें लगता है कि कहीं असिस्टेंस की आवश्यकता है, चाहे वो फीडिंग के रूप में हो या किसी और रूप में, वो हमारे द्वारा प्रयास किए जाते हैं, पर ये प्राइमरीली माँ की ही जिम्मेदारी होती है और माँ उस जिम्मेदारी को बड़ी खूबी से निभाती भी है। हम लोग विशेष रूप से जो असिस्टेंस मैंने देखा है पिछले 3-4 साल के अनुभव में अपने, मैंने जाना है कि यहाँ पे जो गर्मी का मौसम है बड़ा सीवियर होता है, 47-48 डिग्री तक तापमान जाता है, लू चलती है, तो चीतों, बड़े चीतों ने तो अपने आप को ढाल लिया है, लेकिन जो अभी नए नए शावक गर्मी के मौसम में से पहली बार जब गुजरते हैं,
1: जी
0: उनके लिए लू के कुछ दिन जो हैं वो देखने वाले होते हैं। मतलब वो हम मानते हैं कि उसमें कुछ घटना दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है।
1: जी
0: ऐसी स्थिति को मैनेज करने के लिए हम लोग जहां भी चीता अपने बच्चों के साथ में है वहां हम कोशिश करते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी रहे, और हम लोगों ने अपने बाड़ों के अंदर जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाए हुए हैं, जिससे कि एक ठंडा इलाका थोड़ा सा हम डेवलप कर सकें, तो लू से जिससे शावक अब बच सके और पानी का उपयोग कर पाए। ये असिस्टेंस हमारी तरफ से एक प्रयास किया गया है और हमें लगता है कि उसके हमें सफलता भी हमें मिली है, क्योंकि चावकों द्वारा उस इलाके का जहाँ पे पानी की उपलब्धता ज्यादा है, जहाँ पे स्प्रिंकल लगे उसका उपयोग भी ज्यादा किया जाता है। जब पहला मौका था जब बच्चे हुए थे तो सभी के लिए बहुत खुशी का पल था, और उसी पहले ज्वाला की पहले बच्चों में से जो सबसे पहली हमारी भारतीय जन्मी फीमेल शावक जो है वो अब लगभग 3.25 साल की हो गई है, मुखी के नाम से है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश और विदेश में भी उसका नाम जाना जाता है कि मुखी भारत में जन्मी पहली चीता शावक।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मेरा अगला सवाल है कि भारत में दशकों बाद चीतों की वापसी को वैश्विक संरक्षण जगत ने किस नज़रिए से देखा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट की किस प्रकार से सराहना हुई है?
0: ये प्रोजेक्ट वैश्विक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट पहले कभी भी इतिहास में नहीं किया गया जब एक जगह से कार्निवोर को दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया गया है। तो सभी की नजरें हम लोगों पर टिकी हुई हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे कैसा चलता है, सफल होता है नहीं सफल होता है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। हमारा जो एक्शन प्लान, चीता एक्शन प्लान भी बना है, वो भी इस प्रोजेक्ट की सफलता का आकलन सही मायने में कहता है कि 25 से 30 साल के बाद ही किया जा सकता है। तो लेकिन जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इसमें गोल हैं, उसके बेसिस पे हम लोग जरूर आकलन करते हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो विश्व भी इसको उसी दृष्टि से देखता है कि जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के गोल हैं क्या उस दिशा में प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अगर भारत इसमें सफलता अर्जित करता है और उन गोल को अचीव करता है तो ये टेम्पलेट होगा सभी देशों के लिए जो इस प्रकार के प्रयोग करना चाहते हैं।
1: जी।
0: तो सभी की नजरें इस पे हैं, और मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म के गोल इस प्रोजेक्ट के लिए रखे गए थे, जिसमें मुख्यतः ये था कि अडेप्टेशन जल्दी हो जाए, ब्रीडिंग यहाँ पे हो जाए, और जो मोर्टलिटी है, जो एडल्ट मोर्टलिटी होती है वो नियर नेचुरल लेवल पे पहुंच जाए, उसमें कोई अधिकता ना रहे, जो प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है वो मृत्यु दर प्राप्त हो। तो मुझे लगता है कि इन तीन आस्पेक्ट्स पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सही आगे बढ़ रहा है। वो तीनों चीजें यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि हमने उस दिशा में सही प्रयास किए हैं, वो सफल भी रहे हैं। और उसके अलावा जो और सफलता के आकलन हम लोग करते हैं कि भाई लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा है, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, यहाँ के हैबिटेट में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इन सब चीजों में मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़े हैं और सफलता भी हमने प्राप्त की है। यहाँ पर लोगों का सहयोग हमको बहुत अच्छा मिला है, लोगों ने बहुत, लोकल लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया है, जिसकी वजह से चीता आज यहाँ सुरक्षित भी है और सुरक्षित घूम भी रहा है। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, अच्छी संख्या में आते हैं। तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि टूरिस्टों की संख्या में लगभग 4 साल पहले से 5 गुना इजाफा हुआ है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला है। तो ये इन सभी पैरामीटर पे जो इसकी सफलता का आकलन करेंगे, उन सभी पैरामीटर पे हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और सभी की नजरें उस पे हैं कि क्या एक व्यापक रूप से, कॉम्प्रिहेंसिव रूप से ये प्रोजेक्ट भारत में आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है।
1: जी सर, अभी तक हमने बात की अडॉप्टेबिलिटी की, अडॉप्टेबिलिटी चीतों की कूनों के वातावरण से, कूनों के परिस्थितियों से, लेकिन एक अडॉप्टेबिलिटी की बात हम करते हैं कूनों में मौजूद जैव विविधता, यानी पहले से जो जानवर वहां मौजूद है कुनों में पहले से तेंदुए हैं, लकड़बग्घे हैं, इन पुराने निवासियों और नए मेहमान यानी चीतों के बीच किस प्रकार से तालमेल रहा है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: यहाँ पे कुनों में तेंदुए की काफी अच्छी संख्या है, लकड़बग्घा हाइना उसकी भी संख्या अच्छी है। और एक सबके मन में शुरुआत में ये डर था कि तेंदुए के साथ में चीता का इंट्रैक्शन कैसा रहेगा, क्योंकि अफ्रीका में जहाँ पे भी चीते हैं ये कहा जाता है कि लगभग लगभग 10% चीतों की मृत्यु तेंदुए की वजह से होती है, तेंदुआ चीता के बच्चों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक एप्रिहेंशन सबके मन में था, लेकिन हमारा जो पिछले सालों का अनुभव है उसमें यह है कि दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, चीता लेपर्ड के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, हाइना के बीच में भी इंट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन उसके कोई बहुत नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है। चीता एक स्मार्ट एनिमल है, वो सर्वाइवल जानता है और लेपर्ड के साथ कैसे रहना है, लेपर्ड के बीच में कैसे रहना है, इसको वो पूरी भली भांति समझता है। इंट्रैक्शन हो रहे हैं, यदा कदा कभी नेगेटिव इंट्रैक्शन सुनने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से चीता को यहाँ पर ऐसा खतरा है कि वो सर्वाइव नहीं करता, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई भी बात है। एक हैबिटेट इम्प्रूवमेंट है हमारे, अगर हम इस कुनों की बात करें तो कुनों में मुख्यतः ग्रासलैंड का एरिया है, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है, और हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों में जंगल को सुरक्षित करने की काफी प्रयास किए हैं, हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के प्रयास किए हैं, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाई है, ग्रासलैंड डेवलप किए हैं, उसका फायदा ये हमको मिला है कि जो स्पीशीज यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कभी नहीं थे या बहुत पहले कभी हुआ करते थे, उन स्पीशीज की वापसी हुई है
2: जी।
0: अभी हाल ही में हमको फॉरेस्ट आउलेट यहाँ देखने को मिला जो इस कुनो लैंडस्केप में कभी पहले नहीं देखा गया था। पहली बार हिस्टोरिकली वो फॉरेस्ट आउलेट जो कि बहुत ही रेयर बर्ड है और 90 के दशक में इसको एक्सटिंक्ट भी घोषित कर दिया गया था, वो कुनो में हमको मिला है। इसी प्रकार से भेड़िया इंडियन वुल्फ जो है वो कुनो में बहुत पहले कभी 20 साल पहले कभी रिपोर्ट हुई थी, जो हमें अब वापस देखने में मिल रही है। और इसी प्रकार से वाइल्ड डॉग की रिपोर्टिंग भी कुनो लैंडस्केप में कहीं नहीं थी, उसकी भी रिपोर्टिंग हमको अभी हाल ही में हुई है। इस प्रकार नए नए जानवर जो कभी यहाँ पे लोकली विलुप्त हो गए थे वो वापस इस लैंडस्केप में हमको दिखाई देने लगे हैं। तो ये सिर्फ चीतों के ही इंट्रोडक्शन की बात नहीं है, चीतों का इंट्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है ये जो पुराने लोकली विलुप्त जानवर थे उनके वापस लाने के लिए भी। तो इन सबके बीच में जो है अब चीता भी है और मुझे लगता है कि चीता बहुत अच्छे से इनके साथ में एडजस्ट करेगा।
1: कुछ चीतों की मौत ने थोड़ी चिंता बढ़ाई थी, तो बीमारी और संक्रमण से बचाने के लिए मेडिकल टीम किस प्रकार से काम करती है ताकि चीतों को सुरक्षित रखा जाए?
0: इस पूरे प्रोजेक्ट में वेटरिनेरियन की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है
2: जी।
0: चीता को नॉर्मली एक अंडरस्टैंडिंग है, चीता एक फ्रेजाइल एनिमल है, नाजुक जानवर है, जिसको अगर कोई बीमारी होती है तो बहुत ज्यादा समय वो नहीं देता कि हम उसे बचा सके। तो एक बहुत हमारी वेटरिनरी टीम की बहुत सजग रहने की आवश्यकता होती है। मेरे 2 वेटरिनरी डॉक्टर जो है वो जहाँ हमारा मुख्य चीता केंद्र है पालपुर में कुनो के अंदर, वहां पर 24 घंटे उपस्थित रहते हैं और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रोजेक्ट में पिछले 4 साल में रही है। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे पास एक मोबाइल हॉस्पिटल भी है, एक गाड़ी को हमने हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया है जो हमेशा तैयार रहती है और बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग किसी भी जगह में जहाँ कहीं इमरजेंसी हमें चीता की पता चलती है हम पहुंच सकते हैं
2: जी।
0: तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है, 4 साल से कड़ी मेहनत उन्होंने की है और कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी जहाँ पे चीता को कोई बात हो और हम लोग ना पहुंच पाए हो। हम लोग सही समय पे पहुंचे हैं और हमने काफी प्रयास किया। तो हमारे पास में सभी प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट जो हैं जो एक हॉस्पिटल में होने चाहिए या चीता का वेटरिनरी ट्रीटमेंट करने के लिए होने चाहिए वो हम लोगों के पास में है
2: जी।
0: हमको सरकार ने इसमें पूरी खुली छूट दी है कि किसी भी प्रकार की कमी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग पूरी उस दिशा में हम लोग ध्यान देते हैं, दवाइयाँ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी हम लोग को चाहिए रहती है वो हमारे पास में यहाँ पे उपलब्ध है और हम लोग बड़े सजग हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इतने बड़े जंगल में चीतों की निगरानी के लिए कौन कौन सी आधुनिक तकनीक काम आ रही है?
0: हर एक चीता हमारे द्वारा रेडियो कम सेटेलाइट कॉलर किया गया है, मतलब एक ऐसा कॉलर पहने हुए है जिसमें रेडियो सिग्नल भी आता है, सेटेलाइट से भी उसकी लोकेशन ली जा सकती है। हम लोगों के पास में एक मोबाइल में ऐप रहता है जिससे सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन आती है, और रेडियो सिग्नल ट्रैक करने के लिए एक रेडियो एंटीना होता है जिसे हमारी मॉनिटरिंग टीम जो है वो अपने साथ में लेके चलती है। तो कोई

चीता हमारे खुले जंगलों में अगर है तो उसके पीछे एक टीम सतत रहती है, 24/7 एक टीम रहती है जो उसकी स्थिति मॉनिटर करती है और उससे एक उचित दूरी पे बना के रखती है ताकि चीता को भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, लेकिन चीता लोकेशन में रहता है।

0: बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में यूज की जाती है, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग कैमरा ट्रैप का बड़ा रेगुलरली उपयोग करते हैं। कैमरा ट्रैप हम लोग लगाते हैं पूरे अपने जंगलों में, जिससे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमें पता चलती रहती है। साथ ही जो चीतों के बाड़े हैं, हमारे पास में लगभग 1,000 हेक्टेयर का ऐसा क्षेत्र है जिसको हमने फेंस किया हुआ है प्रेडेटर प्रूफ फेंस से। और जब हम कहते हैं कि चीते बाड़े के अंदर हैं, वो इसी फेंसिंग के अंदर रहते हैं, जिसे हम सॉफ्ट रिलीज बूमा भी बोलते हैं। 1,000 हेक्टेयर को हमने 14 छोटे छोटे बाड़ों में बांटा गया, मतलब 70 से 80 हेक्टेयर का एक क्षेत्र होता है जिसमें एक चीता रहता है। तो इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए हमने हाई मास्ट कैमरा लगाए हुए हैं। ये कैमरा नाइट विजन से भी वो है, रात में भी देख सकते हैं, और पूरा हमारी फेंसिंग और बाड़ों की निगरानी जो है इससे हो पाती है। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें लगता है कि प्रोटेक्शन में, इनके मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकती है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और के रिजल्ट भी हैं कि हर चीता हमारा बेहतर मॉनिटर हो पाता है।
1: सर, अभी हमारी बातचीत में आपने जिक्र किया कि गांधी सागर अभयारण्य को चीतों का दूसरा घर बनाने की तैयारी की जा रही है, और आपने बताया कि वहां शायद कुछ चीते छोड़े भी गए हैं। अभी क्या कुछ उसके लिए प्लानिंग चल रही है और कितने चीते वहां पर रखे जाएंगे, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
0: गांधी सागर जो सेकंड चीता इंट्रोडक्शन साइट है, ये लास्ट ईयर शुरू हुई है, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे दो चीते पिछले साल 20 अप्रैल को छोड़े थे, दो मेल चीते छोड़े थे। उसके बाद 17 सितंबर को एक फीमेल चीता और गांधी सागर में छोड़ा गया। इसको वैसे तीन चीते गांधी सागर में हैं,
1: जी
0: और वो एक फेंस्ड रिजर्व के रूप में एक एक प्रयोग किया जा रहा है। फेंस रिजर्व मतलब आप जंगल का एरिया घेर देते हैं, वहां पर करीबन 68 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र फेंसिंग से घेरा गया है। ये कुछ अफ्रीकन, विशेष रूप से साउथ अफ्रीका में इस प्रकार के फेंस रिजर्व होते हैं, और चीता इन्हीं फेंस रिजर्व में साउथ अफ्रीका में स्थापित भी हुआ था प्रारंभिक दशा में। तो ये फेंस रिजर्व कॉन्सेप्ट पे गांधी सागर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार वहाँ फेंस रिजर्व के अंदर करीबन तीन चीते हैं, दो मेल एक फीमेल, और भविष्य में भी उनकी संख्या में इजाफा हम लोग करेंगे जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जाएगा। ना सिर्फ गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि और जो साइट्स हैं, हम लोगों ने देश में 10 साइट्स आइडेंटिफाई की हैं। जब शुरुआती दौर पर चीता इंट्रोडक्शन की बात होती थी, तब 10 साइट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जहाँ पर चीता इंट्रोड्यूस किया जा सकता है,
1: जी
0: जिसमें से मध्य प्रदेश में एक नौरादेही टाइगर रिजर्व है, और बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में है। तो अभी ये दो साइट भविष्य में बहुत जल्दी हम लोगों की शुरुआत करने का है कि चीतों का विस्तार इन दोनों साइट्स में भी हो, और हम लोग जो है 4 साइट चीता के लिए डेवलप कर सके। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी चारों जगहों में मेंटेन रहे, इसको ध्यान में रखते हुए चीता का इंट्रोडक्शन किया जाएगा। हमारे पास में 3 अलग-अलग देशों से चीते लाए गए हैं, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से। तो तीन जो हमारी यहाँ पे भी साइट्स बनेंगी, हमारा प्रयास यही रहेगा कि तीनों देशों के जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन इन साइट्स पे हो जाए।
1: जी
0: वो कितना फिजिबल होता है, कैसे होता है, ये भविष्य में जब हम निर्णय लेंगे तभी ये डिसाइड हो पाएगा।
1: जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट चीता आज वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बन चुका है। अगले 5 साल में ये कहाँ होगा, श्रोताओं को इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: जैसा मैंने कहा कि चीता प्रोजेक्ट एक अपने आप में कि यूनिक प्रोजेक्ट है, सारी दुनिया की निगाहें इस पे हैं। साउथ अफ्रीका में ये प्रोजेक्ट 70 के दशक में ऐसे शुरू हुए थे चीता इंट्रोडक्शन के, नामीबिया से चीता साउथ अफ्रीका लाए गए थे, और लगभग 20 साल तक वो पूरा फेलियर रहा, कहीं भी चीता स्थापित नहीं। 90 के दशक में फिर फेंस रिजर्व के भीतर उन्होंने प्रयोग किया, उसके बाद उन्हें तो सफलता उसमें मिली है। तो एक यूनिक प्रोजेक्ट एक की हम शुरुआत कर रहे हैं। हम एक ओपन फॉरेस्ट में चीता दूसरे कॉन्टिनेंट से लाके यहाँ पे एक अलग तरीके का इतिहास यहाँ पे की बात हो रही है, तो विश्व इसको बहुत पैनी नजरों से देख रहा है, और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत पहचान बनाने में ये सफल भी हुआ है कि जो भी काम कोनों में हो रहा है ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले 5 सालों में हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि जैसा मैंने बताया कि 4 साइट हम लोगों की डेवलप हो जाए, कुल्लू, गांधी सागर, बन्नी और नौरादेही, ये 4 साइट हमारी डेवलप हो जाए, और इन 4 साइट्स में चीतों की संख्या जो है वो एक हेल्दी पॉपुलेशन चीता की वहां हो। उसके बाद में फिर हम और बाकी साइट्स के बारे में भी विचार करेंगे। तो अभी 5 साल में हमारा उद्देश्य यही

0: है कि चारों साइड्स पे चीता पॉपुलेशन बने और बढ़े, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और मेरा श्रोताओं से बस यही कहना है कि ये चीता, भारत में चीता की वापसी सिर्फ एक स्पीशीज की वापसी नहीं है, ये भारत सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को वापस लाना है। हमने आजादी के बाद से कोई भी जानवर, ऐसा बड़ा मैमल, बिग मैमल हमने नहीं खोया, सिर्फ एक चीता था जो हमने 1952 में खो दिया। और एक कहते कि सबके मन में एक ऐसी बात थी कि ये हमारा चीता हमारी एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रहा है, ऐतिहासिक काल से चीता हम लोगों के रहा है
1: जी।
0: तो इस चीता को वापस लाना जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया है, उनके द्वारा यहाँ वापस लाना न सिर्फ चीता को वापस लाना है बल्कि हमारी खोई हुई प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को वापस लाना है। तो इस ये सिर्फ किसी एक प्रदेश की विरासत नहीं है, किसी विभाग की नहीं है, तो पूरे जितने हमारे देशवासी हैं उन सबकी एक विरासत है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको वापस ला के दी। तो हम सबका ये दायित्व होता है कि इस विरासत को हम दोबारा ना खोने दें, जो भी अपने स्तर से हम संभव प्रयास कर पाए, जो भी मदद कर पाए, उसकी हमें उनसे अपेक्षा रहेगी।
2: एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई उत्तम जी, आज आपसे बात करके न सिर्फ हमें बल्कि हमारे तमाम रेडियो श्रोताओं को प्रोजेक्ट चीता की उन बारीकियों और ज़मीनी हकीकतों को जानने का मौका मिला जो कि अक्सर अखबारों की सुर्खियों से भी पीछे छूट जाती हैं। श्रोताओं, आज की इस बातचीत से एक बात और साफ हुई कि धरती पर दौड़ते ये चीते सिर्फ एक वन्य जीव परियोजना का हिस्सा नहीं बल्कि यह नए भारत के उस ऊंचे संकल्प का प्रतीक है जिसका सपना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, और यह हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रमाण है कि हम प्रकृति को उसका पुराना गौरव लौटा रहे हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वह दिन दूर नहीं जब हमारा चीता स्टेट पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा रोल मॉडल बनेगा। उत्तम कुमार शर्मा जी, आपने बेहद व्यस्त शेड्यूल में से हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारियां साझा की, इसके लिए हम पूरे आकाशवाणी परिवार और करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका हृदय से आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
2: श्रोताओं, तो ये थे उत्तम कुमार शर्मा जी, कूनो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और वरिष्ठ वन अधिकारी, जिन्होंने आज हमारे साथ इस सार गर्भित चर्चा में भाग लिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम पीएम मोदी के 12 साल मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, वार्ताकार अभिषेक कटियार। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकाल विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है।

0: इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा होगी। 7:45 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 8 बजे। 8:35 पर फिल्म संगीत। 9:30 बजे साहित्य भारती आकाशवाणी दिल्ली से और आकाशवाणी दिल्ली से ही रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर कल दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम बता दें। 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम में समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां, गीत संगीत और समय के साथ। सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा 8:30 बजे। आरती तिवारी के गए बुंदेली लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत में। समय रहेगा 9:15। 9:30 बजे सुनिएगा सिंधिया जी सुरहान, इसमें कल आप सुन सकते हैं उचित पोषण और खाद्य सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर ज्योति केशवानी से बातचीत। 10 बजे जिले की चिट्ठी। सामुदायिक गान शिक्षण पाठ में कन्नड़ गीत सुनिएगा 10:05 पर। 10:30 बजे पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसका भाग 5 आप सुन सकते हैं। 10:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में 7:30 से 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो ग्राम सभा, जिसमें

विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर दीनानाथ घोरे। यह थे आकाशवाणी भोपाल के कल के कार्यक्रम। अब आइए जानकारी दे दें आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, इसे सुन सकते हैं आप कल सुबह 11 बजे। 12 बजे आपकी फरमाइश संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 बजे सुनिएगा जंग लगी तलवार, इसका भाग दो। 1 बजे महिला कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा, आकाशवाणी शिवपुरी से ही सुनिएगा। 1:30 बजे लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा 2:00 बजे, 5:33 और 6:00 बजे। बच्चों का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 2:30 बजे, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। पीएम मोदी के 12 साल, मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। रात 8 बजे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। 8:35 पर फिल्म संगीत। रूपकों को अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 बजे और रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में विद्वान MSN मूर्ति का वायलिन वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 7:10 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति, कहा केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 का शुभारंभ किया। इस मंच में 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।
1: ऐसे समय में जब उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और नवाचार में समान गति से जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो आपके यहाँ आना हमारे लिए एक अलग प्रकार की छलांग लगाने का अवसर भी देने वाला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्यदेश का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ निर्यात लगभग 3,835 करोड़ तक पहुँच गया है, जो 19% की शानदार वृद्धि को बताता है और फार्मा क्षेत्र में इसमें हमारा खास योगदान है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश LAC व्यापार एवं निवेश मंच के डिजिटल प्लेटफॉर्म व आधिकारिक

0: वेबसाइट का लोकार्पण किया, जो वैश्विक व्यापार और निवेश के नए अवसरों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने द बिजनेस टाइकून पुस्तक का विमोचन भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज से पहले कैंसर रोकने का अभियान जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर गुटखा, तम्बाकू, शराब और बीड़ी सहित अन्य नशीले पदार्थों को बंद करने का अभियान चलाएं।
1: हम एक अभियान नहीं चला कैंसर हो उसके पहले कैंसर रोकने का, और वो अभियान है गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी बंद करने का अभियान, नशा मुक्ति का अभियान। आखिर कितनी दारू और काय के लिए दारू, जानबूझ के विनाश के सामान क्यों इकट्ठे कर रहे हो? कई आपने कम उम्र के बच्चे लीवर खराब हो, क्या तुम ये नहीं समझते तुम्हारा परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता? माता पिता कहां से पैसे लाएंगे तुम्हारे लिए? क्या करेगा परिवार तुम्हारा? हारे माता पिताओं को, समाज को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। पूरे प्रदेश में चलाए नशा मुक्ति का अभियान। उस दुकान के अलावा जो लाइसेंस ही है, घर घर में शराब, गांव में शराब, दुकानों में नहीं मिलेगी।
0: प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त 3 सीटों के लिए आगामी 18 जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। वहीं जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देशभर के हवाई यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 निजी कैब कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन समझौतों के अंतर्गत प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को निर्बाध, किफायती और विश्वसनीय कैब सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। विश्व की अग्रणी कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी हेलियन द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली यह अत्याधुनिक इकाई मुख्य रूप से ओरल हेल्थ उत्पादों के निर्माण पर केंद्रित होगी। यहां उत्पादित सामग्री घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ एशिया, प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के अनेक देशों में निर्यात भी की जाएगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन को आज नई दिल्ली में संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
3: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा

0: देश है। ये देश के युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां तेज आंधी, गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने आज बिजावर विधानसभा क्षेत्र के सटई नगर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। खंडवा में महिला संबंधी अपराधों की विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम जिले में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रेशम पालन और वस्त्र निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षित कर्मचारी विभिन्न डिजाइनों की साड़ियां तैयार कर रहे हैं। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने एक समीक्षा बैठक के दौरान जिले में जल निगम द्वारा संचालित जल प्रदाय योजना और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन की समीक्षा की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम सभा सुनवे बारे हमें सभी भयन खो सभी बहनन खो आपकी अपनी पूनम बहन की प्रेम भरी ने भरी दो दो हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब इन्होंने हुए। देखो का है भैया बहना हरों थोड़ो थोड़ो सो मौसम अब बदलन लगो है। बस कारे और तेज हवा

चौपाल कार्यक्रम के समय सुनैयन का हमार सत्यभामा बहनी के राम राम। भाई बहनी, आज 6 जून है और अजुए के दिन लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदुलोई की जयंती है। गोपीनाथ बोरदुलोई केवल असम के एक नेता भर नहीं रहे, बल्कि वो एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ रहे, गांधीवादी और आधुनिक असम के शिल्पकार रहे। भैया बहनी, बोरदुलोई असम के पहले मुख्यमंत्री रहे, जे असम का भारत के हिस्सा बनाए रखे और विभाजन के समय उनका पाकिस्तान में शामिल हो से बचावे में मुख्य भूमिका निभाए रहे। उनके इन योगदान के कारण उनका लोकप्रिय की उपाधि दीन गई रही और 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किन गया रहा। भैया बहनी, सरकार 12 वर्ष पूरा हो के साथ है हर युवा के सपना साकार कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री युवा कौशल योजना हो और के चाहे प्रधानमंत्री युवा लेखक मैट्रिक योजना, चाहे प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, कौशल विकास और उद्यमिता के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गए यह योजना के उद्देश्य युवा भैया बहन इनका उद्यमितशीलता का बढ़ावा देव है। कौशल प्रशिक्षण और व्यवसाय शुरू करे के लाने मार्गदर्शन देव है। एक ही अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना घलाई चलाई जाती हैं, जो ने माँ युवा भैया बहनी का ब्याज मुक्त युव के सब्सिडी वाले ऋण प्रदान की जाते हैं। भैया बहनी, बस जरूरत है हर युवा शक्ति का जागरूक और जिम्मेदार बने के, मानो जागरूक बन के योजना के लाभ ले और जिम्मेदार बन के परिवार और देश की जिम्मेदारी निभाई। भैया बहनी, सरकार केवल युवा शक्ति भर के नेता नहीं योजना चलाई है, बल्कि हर किसान भैया बहनी के नेता विशेष रूप से ध्यान में राखी के किसान भैया बहनी के नेता किसान सम्मान निधि योजना के चलाए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जिन के उद्देश्य छोटे और सीमांत किसान भैया बहनी का आर्थिक संबल प्रदान करब है। ये योजना के अंतर्गत हर पात्र किसान परिवार का प्रतिवर्ष 6,000 के वित्तीय सहायता दी जाती, जौन हर 4 महीने के अंतराल में 2,000 के किस्त सीधे किसान के खाता में DBT के माध्यम से भेजी जाती। भैया बहनी, आज शनिवार आए और आज रंभस के दिन आए, यहीं से सब भैया बहनी हरेन मैं बाजा गाजा और साथी संगतिन के साथ रंभस के नीता बैठी। तो भैया बहनी, अब हरवी से चली रंभस के कहती और रजनी बहनी के गाई गणेश भजन से रंभस के श्री गणेश करी। होय पुन बहनी रंभस के श्री गणेश।

0: 20. मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: भैया बहनी, कल्पना बहनी और साथिन से भोला गीत सुन ली सुनाई पुन बहनी।

मैया बहनी आज के रंभस कैसन लाग ये चिट्ठी के माध्यम से जरूर लिखब और अब हो गए चले के जीवना तो अनुमति दे। चौपाल कार्यक्रम के सबई सुनियन का हमार सत्यभामा बहनी के राम राम, जय जवान जय किसान।

0: Said women empowerment is one of the key priorities of this government and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
1: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ. और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति. उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता. और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है. उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति

0: होती है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है जो दिखाई देती है. मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है. इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके. और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया. और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी,
0: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी. तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन. सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वही नहीं रुके क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे. लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं. मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया. देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
1: जी.
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है. और वो महिला बन जाए तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है. और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है. हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट. और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी है. और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लड़की से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है. ये प्रारंभ है लखपति योजना. नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है. और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही है उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं. और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है. पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस्ड 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे. लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही. और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी. क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं. हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स. तो वो काम भी हो
1: जी.
0: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है. और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है. इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है. शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था. महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं? तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं. और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं. और हम ये मानते हैं वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो.
1: एब्सोल्युटली.
0: तो ये सशक्तिकरण मात्र
2: इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच विमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशियरीज एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज. 3 करोड़ प्लस विमेन लेड MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
1: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the four pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women are given conditions and, you know, women are handheld to achieve their true potential. So what we are seeing today is that driven by several life cycle based approaches through the policy framework of the government. We have schemes now that have targeted interventions through sectors like health, education, housing, there's digital access, sanitation, then you have financial inclusion. What I'm basically trying to say is women are today in a position through the policy framework to lead self-help groups, launch businesses. You know, they're breaking barriers in science, defense and sports. We just saw JEE Advanced results come in and how women were leading over, you know, the girls were leading over boys in several of the top positions. So in STEM disciplines, Indian women are leading, not just in India, but across the world also. Right now, as we speak, fresh data has suggested that women and children, you know, they comprise 67.7% of India's population, the data that has come in just before the beginning of the new census. So empowering them is not just a requirement anymore. It is a strategic imperative. Because look at the percentage of women and children in the country, literally 70% right now. So that is the basis of the landscape that is being created. What you just mentioned, that you have women leaders across segments these days. And you rightly said that, you know, you have women in startup leadership roles. You have women across Mudra loans. You have around 70% Mudra loans that have gone to only women. So the gaps that existed in the policy framework to enable women to achieve their financial potential have now been filled through several schemes. And what we also need to remember, Sonu, is that for generations, Indian women have faced systemic barriers. You know, there have been limited access to education and healthcare, to employment, as well as decision making, especially if you look at the rural heartland of the country. But now what you see is, you see a massive movement of around 90 lakh self-help groups. This is basically a rural economic phenomenon. And 10 crore women are already associated with these self-help groups. This is the backbone of the Lakhpati Didi program that the government is mentioning and is powering like never before. And they have also enhanced the targets under this scheme. I think the plan is now to have 6 crore, if I'm correct, women attain the Lakhpati Didi status. The idea is basically to help women make 1 lakh rupees annually as income through various programs that go on under the self-help group movement of the government of India. So there is focused intention to help women reach where they belong. And the larger point that we have to make is that women are now no longer seen as passive beneficiaries of government schemes. They are seen as empowered agents of change, you know, central to the growth story of the country. And if you look at the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, you will realize that the government has put in its policy intent also to ensure political empowerment of women, which is the ultimate empowerment.
2: You were saying, you know, that women are not just passive beneficiaries. Bank sakhis, krishi sakhis, pashu sakhis, these concepts, you know, really embody what you're saying, that empowerment of women by women.
1: Yeah, yeah, absolutely. You see, for a very long time, what had happened is, like, I think Sushma ji was mentioning very rightly, she was saying that it's never been that there has been lack of potential on the side of Indian women. Mm-hmm. You know, women in our country have a profound legacy of strength. Throughout centuries, if you look, they've led empires, they've driven social reforms. You know, they've even fought on the front against the colonial British rule. I mean, we have Rani Lakshmibai as an example, Rani Chennamma, Ahilya Bai Holkar. Among freedom fighters, we have Lakshmi Sehgal, Sarojini Naidu. So there are n number of examples of women enterprise in our country through different sectors and through different segments. What had happened is, suddenly after independence, there was lack of policy intent to see women as drivers of change. So, you know, you were not looking at women as a segment that can drive the economy of the country. Now that entire policy focus has shifted. And like you said, that women have been brought into the financial mainstream of the country. And the first big step that helped lay down the landscape for that was the the Jan Dhan accounts. Now, this sounds very simple. It sounds very mundane, but it's a very, very big, very consequential reform. Under the Jan Dhan accounts, the bank accounts that were opened, zero balance account,

0: majority of the accounts are owned by women. I think, if not majority, at least 40% of these accounts are with women. And around 58 to 60 crore accounts have been opened in the country. So once you have the banking system in place, you have linked women beneficiaries through Aadhaar to these bank accounts. So all the benefits of government schemes, if a woman has been given Mudra loan, that's going into her bank account. There are several schemes of the government running on the health side. For instance, you know, there is Surakshit Matritva Yojana is there. Then there's Sukanya Smriddhi Yojana, which are basically meant to help, you know, improve the sex ratio in the country. So you're basically encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the Jam Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, you know, pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers, and then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system, and you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them.
1: Sushma ji, Aditi ji ne life cycle targeted schemes ki baat kari, aur jo daughters hain unke education unke birth se hi unke liye aage ki unki jo future hai usko secure karna. Agar hum PM Sukanya Samriddhi Yojana ki baat kare, jiska zikr Aditi kar rahi thi, to usme jis tarah ka vikas hua hai, agar hum dekhe to financial year 2014-15 mein 4.2 lakh accounts the, aur financial year 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4 करोड़ 53 लाख अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीस हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी, ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट, और वाज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज अ ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप JEE देख लीजिए, आप CBSE देख लीजिए, आप NEET देख लीजिए, आप BA, MA, PhD यूनिवर्सिटी कन्वोकेशंस एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they're outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए, कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए. और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है, उसके लिए भी
1: बिल्कुल.
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं, जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं LPG कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो PM मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ट. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर
1: फॉर द यूनिवर्सल

0: immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
1: Yes.
0: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek yes. aur jo aapne baat kari matritv support di ja rahi hai ji, so maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain, aur institutional deliveries 68% se badhkar 90% से अधिक हो गई है जी, 98 बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
0: जी,
1: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं
0: जी जी.
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी, फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया, देन जो मातृ मृत्यु दर मोर्टेलिटी एज यू सेड which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, yes. which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: And also when yes. women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, yeah, due to the yeah. Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. You can see the women have dreams about their children now, and especially the daughters. I have come across, as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
0: Yes.
1: और मोदी जी जो बार बार कहते हैं, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है.
0: Yes.
1: This is the linkage yes. between women's health and the empowered और विकसित भारत, as we say, आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
0: Absolutely. आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे, उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है, ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का, जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है RG कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं. और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए। सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है। समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो। पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है।
0: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000 प्लस विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है। लेकिन इन सब का भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं, ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
2: बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती है, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है, तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए, जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है, बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है। अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
0: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है, या गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 200,000 से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है, और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY 2020 5 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
1: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है which is easier for women especially if you don't have to go anywhere and you can still access most of the facilities nothing better than that that is almost best because apne aap mein

0: मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं, वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है. इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं. मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए. क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे. There can't be a better recipe because if you get some financial support, which women need usually, and maybe after some time they don't even need, they may have their own groups, they may have their own financiers also, like they are coming up now. But with that, you also need later skills because skills keep changing. And the market needs different kinds of skills. At times, they may be digital skills in coming time. And you see, women are really very good at that because this is heart and hand, both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also, I would say, or fields, then they are ready for the world. और ये सरकार चाहती है, women led development कब होगा? वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है. 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%. और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं, ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी. और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार हो.
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है. और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका. एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है. सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी.
0: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया. आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज. आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न. एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन. तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर? तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी? आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे. और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा. और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी.
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं. तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी। अक्रॉस सेक्टर्स women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
0: Thank you.
3: In this special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. Isme bhaag le rahi thi Professor Sushma Yadav aur varishth patrakar Aditi Tandon. Karyakram ka sanchalan kar rahi thi Sonu Sood. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष युवा शक्ति। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

आंधी फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत मौसम फिल्म से लिया है, आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना गुलजार की, संगीत मदन मोहन का।

आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना है ये। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर या कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopair@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स और DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर-18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा

0: कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों

पूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का

0: tomorrow. Heavy rainfall conditions are expected over most parts of northeast India, interior Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क के मौशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीजों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया। अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाजराई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिका मामलात पर भारत सरकार खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को सलाह देता है। आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉक्टर पी के मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की। मरकज ने वजन से मुताल्लिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी। सारिफीन के उमूर के महकमे ने मजकूरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमू मकदार और पैकेट के मयारी साइज का तायुन करने से मुताल्लिक तरीक़ाकार में तरमीम की है। सारिफीन के उमूर खुराक और तकसीम आमा महकमे की वजारत ने कहा है कि नजरसानी शुदा जब्तों के तहत बड़े खुर्दनी तेलों के लिए पैकेट के मयारी साइज तजवीज किए गए हैं जिनमें पाम ऑयल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मकई का तेल शामिल है। खुर्दनी तेल के मंजूर शुदा पैकेट 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से लेकर 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम तक के होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर

0: होने के बाद अमरीका की जानिब से आबनाए हुरमुस के करीब कैशम जजीरे और गोरख में ईरानी राडार और निगरानी के मरकज को निशाना बनाए जाने के चंद घंटे बाद ये हमले हुए। इन वाकयात ने नाजुक सिफारती कोशिशों को मुतासर किया है और दुनिया के अहम तरीन तवानाई की गुजरगाहों में बहरी हिफाजत के हवाले से खदशात में इजाफा हुआ है। इस दौरान लबनान में अमरीका की हिमायत से होने वाली जंगबंदी को एक और धचका उस वक्त लगा जब इसराइली फजाई हमले में जुनूबी लबनान में एक लबनानी फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
1: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काकामी गहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 से शिकस्त दी। भारत की तरफ से आशीष पूर्ति ने 3 किए जबकि 1 कप्तान केतन कुशवाहा ने किया। इधर भारत की खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हराकर कांसी का तमगा जीता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीतने पर भारतीय मर्दों की टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा किया और इसके नतीजे में फाइनल में यादगार जीत हासिल हुई। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने कांसे का तमगा जीतने पर 18 साल तक की उम्र की खिलाड़ियों की भारतीय खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टाइटल जीतने पर आर प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस शानदार संगे मील से उनकी लगातार उम्दा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। वजीर आजम ने उनके मुस्तकबिल के खेल मुकाबलों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। 19 साल श्वेता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलानबातर में खवातीन की एशियाई इंफरादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही श्वेता ने 2027 के फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्यादे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक, केरलम और माही में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले 2 के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैन तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निजाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से ये बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल

इंटरनेट खदमात में मुमकिना रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इक्तसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नामांकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन डी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व

0: एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में, जिस माध्यम ने आज़ादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानी का

0: बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लिए उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी। तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं, मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
0: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुड्डू, वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा, तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के। उसने कहा यार तुम लिख, हमारे यहाँ दिखाओ, तुम क्या कहानी लिख, तो मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा नहीं, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी, उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने। मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भैया क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्र का में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर वो मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले, तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले, मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और फिर कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उसका प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी, उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है?
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है मुझे बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी

0: अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को किसी को लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए, कारण वही है, मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसे कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देना, क्या ना जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली, तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाए, वो औरों से भी सीखती है, औरों को भी समझने की कोशिश करती है। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका हो यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, जो नहीं चल सकता है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर रहे, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहे, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब, जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मक है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपने चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका वो महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है? हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है।

0: और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
1: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी

0: गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
1: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
0: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
1: जी,
0: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
1: शब्द चित्र
0: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात ये कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए, और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
1: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
0: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
1: जी।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
1: जी,
0: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
1: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही
1: जी।
0: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था।

0: अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से, कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के टेक्निशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूँ, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ

भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुली।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुली से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाई हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुली। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: ऋषिकेश गांगुली आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार हैं। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुली इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुली जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा। द विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू 3 ताल। दिस विल बी फॉलोड बाय द्रुत कॉम्पोजिशन इन 3 ताल।

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका।